पर मनाया जा रहा है। ये हिंदुओं का एक बेहद ही पवित्र और मुख्य त्यौहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन दिन मातृगंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी उनके साथ

ऊर्जा के लिए श्रेष्ठ समय दोपहर 12:09 से 1:02 गंगा में डुबकी से मनुष्य के 10 तरह के पाप नष्ट होते हैं। बिना अनुमति वस्तु लेना, हिंसा करना और पराई से या पुरुष पर बुल मचर डालना।

फिर असत्य बातों पर डटे रहना इन सभी पापों का जो है हरण कर गंगा में स्नान करने से। और ये पवित्र स्नान स्नान जो है हरिद्वार वाराणसी ऋषिकेश या प्रयागराज में गंगा स्नान का

automatique.

ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में गंगा तेरा पानी अमृत से जो बढ़ते हैं शहीद संगीत और क्रांति के इतिहास बेहद स्थान रखने खास स्थान रखने वाले ताजी नजरों की आज देश के महान विद्रोही कवि संगीतकार और स्वतंत्र सेनानी नजरों इस्लाम की जयंती है। एक अपने हुकूमत की नींव दिला दी। यहाँ साथियों जब हम नजरों जी का नाम लेते हैं तो जहन में सबसे पहले अपना श्रद्धा साल 1931 में लिखी उनकी कालजयी कविता विद्रोही द रेबल ने देखते युवाओं में स्वतंत्रता की वो अलग जगह जिसे कोई बुझा न सका। वे केवल

में वो आग थी जो गुलामी की जंजीरों को पिघला सकती थी और वो मिठास थी

चर्च एक विद्रोही शक्ति में कहीं भी दोस्तों वे प्रेम और सौहार्द के भी उतने ही बड़े पक्ष थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म के प्राचीन दर्शन जैसे संगीत और गजल दोनों में समान रूप से अद्भुत रचनाएं की। वे इस सच्चे अर्थों में धर्म निरपेक्ष और मानवतावादी थे। आज के दौर में जब हम चारों तरफ अशांति देखते हैं, काजी नजरुल इस्लाम का शांति और भाईचारे हमारे लिए विद्रोही थी। ये पंक्तियाँ हमेशा हमें याद दिलाती हैं कि हमारा लक्ष्य मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। आज के दौर में जहाँ समाज में प्यार सद्भाव और

इसके चलते उनकी एक मशहूर पंक्ति की सूची खंडन आकाश में नहीं घूमेगा और अत्याचारी की तलवार युद्ध के मैदान में नहीं चलतेगी। महान कवि को

कुमार की आवाज में गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत हेमंत कुमार का था। जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के लक्ष्मीकांत और शांत राम को डाल कर सिनेमा को एक से बढ़कर उनके संगम होता था जिसमें बॉबी अमर अकबर एंथनी और आज भी हमारे कानों में गूंजता है। लक्ष्मीकांत शांताराम के दर्शन और केतेलाल राम प्रसाद शर्मा की जोड़ी भारतीय संगीत जगत के सबसे सफल संगीतकारों में से जिन्होंने 1970 से 1995 तक काम किया। लगभग 750 फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया। जोशी मिलन बॉबी अमर अकबर एंथनी गम कहो और मिस्टर इंडिया जैसी ढेरों फिल्मों में उनके संगीत

सफलता जिस फिल्म में मिली थी वो थी पारस में। निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री फिल्म पारस इन्हें सफलता मिली और फिर इन्होंने कभी भी इससे मुड़कर नहीं देखा और दोनों ने कई दशकों तक जीत को सुना जाए जिसके जिससे उन्होंने सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना

रवि की आवाज में गीत हमने आपको सुनवाया पारस मणिकरण से, और इस गीत को लिखा था सर भोपाली ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इसी के साथ दोस्तों आज का नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर का बजट भाषण। और अब आइए देखते हैं अपनी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के एफएम

0: मधुर सुल्तानपुरी के बोलो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो पर दिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: तो वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली। सखी? हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: मुझे भी बताइए जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ क्यों नहीं, सखी सहेली सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार

आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

सिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सत्यम से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुना दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।

अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपना

के बोल और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे।

अमृत सिंह से मनहर उदास अनुराधा वडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

beach

सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर फिर शुरुआत करता है एक इबारत के साथ और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेमार है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने सुखदस कलम उठाई और पर शब्दों ने नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जिस शब्दों का जादुई बाल जाल बुन सकूं, पर मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। बाहर से हवा का झोंका आया, मानो उसकी आंधी की आहट लाया हो। आए बाहर और देखते देखते दिशा बदल गई। उसकी एक झलक पाती थी शरण के बारे बादलों की ओर में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखा और

प्यारी सी इबारत हमने दी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराती मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर आ जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और इस पर आज जैसे नौ तपा शुरू हो गया है, जिसकी गर्मी कह ढाएगी इसलिए की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो। आइए विविध भारती की रेल पर और

बिल्कुल समझा रहा हूँ कि जिंदगी जिंदगी हंसती जरूर है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शो नहीं, खून बनाकर पेश करता है। ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपसे लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रथम गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आपसे सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने सुनकर हम आपके

उसको सौंप कर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला कंपोजिशन है जो गीत हमको हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बस गीत गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा, बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं, आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं सुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर, और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीत का

शक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकार

योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य

क्या उनके प्रति मित्रों का मतलब है, उनका मुनाफा बढ़े,

और अभी 2 दिन तक पूरे धनबाद जिले में अभियान जारी रहेगा।

दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा सुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की बातें बदलती हैं, खुलती रहती हैं, बर्फीली झील पर कोई बादल चरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है सब लिखो मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है, जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि और गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, इसके उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत था सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज़ कौन सी है, अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिएगी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

de decir, Bobby, tenga el hit, Alan Bachitipul, la chica de la que se dice, que ya jugaba en esta jata aquí, ayer a proteger este abasco pescano, los negros de tanto a mujeres calajar este abasco pescano, ahora, yo conseguí usted día aquí, yo caí de la casa, Shellenders, que mujer, yo conseguí a mujeres calajar, y si Katia me hace igual, pues me pica, aquí, el gurú, कोई समर पर दिया गया रजनीकांत अग्रवाल जी द्वारा जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया तो वो गीत कौन सा है तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि रजनीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है और हमारे छोटा बड़ा दुख देख रहे हैं कि इंसान को घर किसी भी मौसम में चैन नहीं है गर्मी में हाई बरसात हो तो बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो देखिए असर तो पता ही है हमारे ऊपर तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो है वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं प्यारीलाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारीलाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का पर्यटन की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन शाश्वत मिलन की तरफ को और बढ़ा देता है।

0: बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। आपने हमें बताया कि 1964 में पारस मणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए और 1979 में सत्यम सिवन सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में दर्द के लिए कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुने और उसके बाद वापस जुड़े इस धारा के साथ।
1: सचियों को अपनी बात कहने का, सचियों फोन पर हमसे बताए अपने दिल की

होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हरी पहली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।

आप सुन रही हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन कार्यक्रम है सुनहरा सफर। और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ, और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। जैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का दहराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे घूमे जा रहे, मौसम लगे सबके लिए।

उनके बाद उन्होंने बड़ी प्यारी की मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीली गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि आज के पंडार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के संचार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए, यानी कौन सा गायिका जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं तो बता दीजिए कि

जीने की राह फिल्म ऐसी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी है। और इसके साथ ही मैं आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं, तो हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफी ने ज्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, जरूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि एक प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप इसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सबकी जो बात है, इन सबके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में

के साथ सारे कौन से लीला सफर यही समाप्त होता है। पर उसके पहले हमारे छोटा ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम तो मानवीय जीव जंतु समुद्री प्रजातियाँ पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम है। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए। गर्मी ठंड बारिश इन सबका ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। उसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ। और आगे लेती हूँ कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

सकते हैं। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये माना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

सुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने कई तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठ कर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए

साल तेलंगाना में लू चलने की संभावना और नौवीं सत्र 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस में शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026

वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असंवैधानिक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव

चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय ने आज पार्टी के कार्यकारी सदस्यों को इस्तीफा दे दिया।

0: विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और ईरान ने हॉर्मुज

राजभेद जाने क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इसलिए आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम केरल माहे तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असम मेघालय बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की

मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज

0: जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। तिवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर है, इसलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी। 25 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के अमूल्य सूचकांक भी आज दोपहर के कारोबार

उसको चलाने को रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्वर्ण के बजाय ओटो निकाले।

से आलम आरा फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में शेवन रिजवी ने इसे लिखा और ए आर सुरेशी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनिए भजन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार मंदिर। आइए सुनते हैं गीत तेरी तेरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। अक्षर चौधरी के हैं बोल शंकर जयकिशन का।

idea. You just had to go. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सीरीज भजन कार्यक्रम है सदाबहार नगरी। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मंडावी की आवाजों में शैलेंद्र की बोल और सलील चौधरी के संगीत के साथ।

0: श्रोताओं को, जो भी सभी शक्तियों को, सभी शाखाओं को नमस्कार कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और अभी भी मैंने जो भी एक दिन लगा

0: जो विकास है जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और दीदी इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सबने।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कथा सुधा की। जो कहानी है जिसमें विचारी की कहानी उसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली है, किसी और उसके बारे में उसको हम सुनेंगे। और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में। जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलते वरना सफर करना पड़ सकता है। वो आपको अंग्रेजी वाले सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचते हैं तो सफर की तैयारी करके और ऐसे निकले। और इसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन स्वादिष्ट वाले हैं। आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे।
1: जी
0: है खाजा और रसिया। जी तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो रसिया हम सुनते भी है,
1: जी
0: बताया जाए बिल्कुल गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है। सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, मुझे बड़ा बताया, खाने वाला भी बड़ा मीठा होता है। बताइए तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यार से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और साथ ही हमारे जो श्रोता है इसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं, चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।

मेरी बारी है। कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कभी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर अब वो झुक गई। रामू की बहू की जान आफत में और कभी बिल्ली के छुटके रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते कूद गई और बचा हुआ घी

ग्रामों के बहुत इसके बाद अब छपान लगाने में लग गई। उधर दिल्ली कमरे में आई, सात के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सोना माल अच्छा है, अच्छी ऊंचाई लग रहा थी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए

मंदिर चंपक गांव की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बालक न रहे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या कर कमर कसी।

पर बैठी बड़े चीन की उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कमरे रामू की बहू के उठते ही छिप गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कमरी दूध पर झुकी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर फटक दिया। कमरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम बुलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर निकाली रसोई छोड़कर और काट पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए।

0: है ये कृष्ण बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्राचीन काल ब्रह्म मुहूर्त में दिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: तो फिर पंडित को क्या होगा आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब तक उनकी आशंका से।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने फोन पर हाथ खेलते हुए उन्होंने कहा,
0: रामू की माँ चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या क्या

0: वहाँ कौन था? पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ शुरू हो जाए।
1: हाँ तो पंडित जी,
0: कितने सोने की बिल्ली बनवाई थी?
2: पंडित चरण सुख मुस्कुराए, अपनी सोच पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने सोने की बनवाई जाए?

0: देखो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: अरे बाप रे बाप, इतनी सोना सोना
0: पंडित जी, ये तो बहुत है।
1: सोलह भक्ति देने से काम नहीं निकलेगा।
0: रामो की माँ, एक सोलह सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोग बहुत से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप समझ नहीं है। इसमें इतना लोग झूठ नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मोल तोल शुरू हुआ और मामला ग्यारह सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, हरे कृष्ण उसमें क्या मुश्किल है। हम लोग किस दिन के लिए हैं रामों की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप

0: और पंडित जी पूजा का सामान कितना लगेगा?
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और 1 मन नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
0: अरे कितना सामान! अरे पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे।
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ हर्ष को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे व्यक्ति थोड़ी है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
0: और नहीं तो खा दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक रहे।
1: पंडित अंकुश की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमेश्वर को मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, तो उससे मुंह न मोड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
0: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
1: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें क्या करता है तो न करो, मैं चला।
0: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ मैं। अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
1: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
0: अच्छा।
1: और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। तो उसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
0: ऐसा
1: है कृष्ण है मेरे कृष्ण।
0: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी के फोन तो देखो।
1: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा रहा हूँ। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी वापसी हुई कमरे में घुस आई

0: अगर पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हमें गाना सुना देंगे।
1: और

0: ज्यादा तो कहते सखी सहेली में और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया जाकर माना ना करे आप तो मान गए होंगे जी हाँ अब दिल्ली तो नहीं मिली ग्यारह तो लड़की क्या कर सकते हैं सर। हाँ जी अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करने की बनती है क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी इन लोगों के सिर पैदा बोलती है और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं जो एक गेम को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं पैर से मार सकते हैं छाती से मार सकते हैं बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
1: बिल्कुल बहुत रोचक मुकाबले होते हैं और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
0: बहुत बढ़िया
1: और ये जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता
0: बिल्कुल
1: ये बाकी हाथों का प्रयोग कर रहा है और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी चलती है संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम देखिए फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस से और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
0: बिल्कुल
1: और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं जिसका विषय रहता है सक्रिय है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं।
1: आप तो देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है
0: बहुत जरूरी
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी लंबाई भी उससे बढ़ती है और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो और दिमाग भी सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है कैसे निकालना है कहाँ से निकालना है बॉल को तो बहुत ही मजेदार ये खेल देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है।
0: हाँ और हमारे श्रोता ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं और जिनमें से एक बात और मुझे इस छवि

0: मतलब हम बचपन में थे और खेला करते थे, तो बारिश के कीचड़ में पूरी तरह से खराब होकर चले आ गए। सैयद को सुंदरता यही है कि खूब कीचड़ में मिट्टी में एकदम खराब बोर होकर खेल रहे थे।
1: बिल्कुल, हमारे एक छोटा लिखा है, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुनिया के लिए सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं,
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको ये सोचते हैं कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा
1: कैलोरी
0: खत्म कर दी जाएंगी। जी
1: बिल्कुल,
0: तो आरती ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है, जिसमें सिखाते हैं हौसला और उड़ान मुझसे मैं भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह बहुत बढ़िया,
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इस बार मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, जाकर जीत
1: मिले और ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता
0: है, हमेशा वही अकॉर्डिंग कहा रहता है।
1: जी बिल्कुल, तो ये जो फुटबॉल
0: हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और जितनी लिखी है वो जरा हम पढ़ते हैं। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस कब है तो और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में और की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है, इससे लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, इतना संसाधन होता है,
1: बहुत बढ़िया चीज है ना। देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं और खेल से खेल के अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं और इस मजबूती को सबसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें,
0: बिल्कुल वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ती रहेगी
0: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले दिन दोस्त को पास करना, शायद सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ रही है,
1: सहयोग की भावना इसी को कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं उसको विश्वास रखते हैं कि वो गोल कर देगा
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और भी सुनेंगे।

0: रूप है।
1: क्या बात है।
0: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो छिल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है। क्योंकि रोजमर्रा की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास मिल जाती है।
1: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना तो आती रस्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठे खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटी छोटी पर कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे ये पैर मोटे ना, बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा फर्क जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती। पर लगता है ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते हैं ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वो चीज वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता है जब अकेले। और आंटी एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पूड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का सलाद खुलता है, सारी खुशबू हमारे तक आ जाती है। और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो बोले तो हम भी ऐसे बोले
0: जी बिल्कुल। और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना सब कुछ बहुत खूबसूरत हो रहा है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या कपड़े पहनेंगे, सामान जाएगा तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रखिए अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उस हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह

0: कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती है उनके जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चले। और
1: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और समझ लिया, जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही डायरी उठ जाती है। और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बच जाते हैं और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, सब लिख दिया जाता है।
0: अच्छा,
1: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: पहले से ही ये लिख एक बहुत अच्छी आदत होती है, सही। क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं कि यार कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है, ये ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में कमेंट सेक्शन में सोचा था जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसके झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है या वही पकड़ना है, और पैसे और टिकट किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए। और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और परिवार के लिए निकल सकते हैं तो हमारे श्रोता मित्र हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करें। बिल्कुल, ये सही था,
1: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें जरूर होना चाहिए। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे लोग वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी इतनी सारी जानकारी तो आपने लोग बोल रहे हैं, इन्होंने बाकी सारी जानकारी दे ही दी है। ये बहुत जरूरी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो। जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर हमारे यहाँ गाड़ियाँ जब घूम घूम घूम के जाती है तो मछली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
0: बिल्कुल,
1: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मछली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार से हम सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुविधा हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की, सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी तक, और मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है। परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहाँ जा रहे थे वहाँ की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
0: बहुत अच्छा।
1: अगर सबसे पहले तो इतना चीज, जो आप जहाँ अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप टिकट कर सकें तो पहले से ही जहाँ पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए। और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहाँ पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ये सहूलियत रहे

0: से भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में परिवार जा रहा है साथ में तो बहुत प्रॉब्लम है। और जोड़ना चाहूँगी तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का मौसम और वहाँ के भोजन इनका आनंद जरूर लीजिए, जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल,
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहाँ पर रहना और वहाँ से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाए तो बाकी चीजों का ध्यान रखिए, देश में घूमने के लिए पासपोर्ट जो व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो मुंडी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहने के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे

0: सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा की उसी जेब में उसी जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकते। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है, पूरे परिवार के साथ घूमने में जो मजा और निश्चिंतता होती है क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बढ़ जाती हैं। कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, योजना से ताकि आपका सफर अच्छा बनाए। आप एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि जब परिवार के साथ ही सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए और रास्ते में अंताक्षरी घर का बना स्वाद और अपने सफर को बहुत खूबसूरत और यादगार बना देता है। आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद का खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है। ये मेरा भी पसंदीदा रहा है, ये जो खाजा है ना ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ, बड़ा आनंद आता है। सच में ऐसा लगता है कि मीठा है ना और मीठा के साथ जब दही मिल जाता है तो बहुत बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना इसे बनाना बड़ा आसान है, मैदा चीनी और घी और जहाँ शुद्ध घी रह जाता है वहीं पर मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो सरदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है और इसे तलना होता है। तो जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं, तो आप मोयन डालते हैं और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेलकर मोड़ा जाता है और उसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये तिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है। जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना वो की रेसिपी भेजी है। आपको एक बर्तन में दो कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए तब तक की जब तक की चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता है। और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट जो है और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला दीजिए। और आपका तैयार है और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी पोस सकते हैं। नहीं ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा।
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में
1: आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसे खाने के बाद।
0: और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं हर इंसान के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।

के बच्चों के गले में आपका पूरा पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले डाल दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि अगर उनको कोई परेशानी है कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर रह जाते हो तो

0: हैं आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: हाँ विधि,
0: जी विष्णु विधि। तो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, वहाँ पर रही हूँ क्योंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। बहुत अच्छी
1: बहुत बहुत
0: तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सच्ची सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
0: तो आज की सच्ची सहेली में बस इतना ही, समय

Jesus says,

करते हैं दिमाग को एंटीरियर पिट्यूटरी करके ग्रंथि होती है, वहाँ से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो। हाँ, तो जैसे T3 T4 शुरू होता है ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रिया होती है वो करते हैं। एक लेवल के आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके। ये बैलेंस खराब हो जाता है

डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीन में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचती हूँ पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ,

0: तो देखिए कुल मिलाकर इस प्रश्न के लिए उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कन्फर्म कीजिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय न कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, सुनकर मेरे मन को तूने इससे अगर शुरुआत की।
0: यारा फिल्म का गाना है किशोर कुमार की आवाज में, सुनते हैं।

चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं।

क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बना हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट, हाँ सप्लीमेंट कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, पर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस खाने को सप्लीमेंट के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है गट प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिस ऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है ब्रेन अपना सिस्टम

0: qu'est-ce qu'on mieux fait, qui est pas joyeux, ce qu'il faut mieux faire, quoi que le verre quel qu'on va faire. Donc, comme avec le discours de l'anglais, il y en a un qui est aussi dans le
1: monde. आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने साथ प्रोग्रामी परीक्षण भी इसमें शामिल है, जैसे T3, T4 का परीक्षण आप करवा रही हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाँव।
0: नमो नमो जी शंकरा,

सुना हुआ है बट एक्चुअल होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है और टाइप मतलब प्रकार एक हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया गॉइटर हो गए

फिट वैसे ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, TGP थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम

0: भी अन्य रासायनिक थे।
1: अच्छा।
0: T3, T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो पेशेंट है उसका T3 या T4 कितना है, मतलब बॉडी में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको पेशेंट को ठीक करने में।

0: फिर आता है रेडियो एक्टिव, यानी मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गया, नोड्यूल्स हो गए, इतने सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन, ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग, प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट, तो ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
0: पॉजिटिव
1: आपकी

डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। अब वो पेन एंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, किसी जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, कहीं से किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, फिर उसमें तो दवाई देकर छोड़ देंगे।

जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहे कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़।

0: वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्कोषा आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बच्चों से लेकर अधिक बीमारी आपको हो चुकी है, हिस्ट्री क्या है। इसमें आप

और ज्यादा हो गए हो एग्जाम्पल कभी अगर हमको भूख देखने तक होता है हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाए

अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझे आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रखूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी से तो नहीं बोल सकती, पड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना। तो वो आग बबूला होना या हर वो जो लाल हो जाता है, आग लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ही है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू होती है, आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान। अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे सबको होती है, तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। एक्चुअली होती है लेकिन जब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता।

कोशिश करती है। याद रखिए नेचर प्राकृतिक हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्राकृतिक कभी नहीं करती। शरीर भी वही है, तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है वो चली चीज है वो बाहर निकलेगी। ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ में ही देती है नेचर।

0: से थोड़ा हट जाएंगे।
1: अब क्या होता है तब टीडीएस में, जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बना रहे हैं, खाली प्लेयर वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं।
0: ये कुछ नहीं मान सकते,
1: उसका ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाता है, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है।

0: कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंगवर्म हो गया, एक्ने हो गया, सिंपल पिंपल हो गया। वहाँ पर हम क्या करते हैं, बस क्रीम लगाओ, अच्छा लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना, अंदर कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने वाला है, और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम की सारी प्रक्रिया जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथिका जड़। तो इसलिए फास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है फास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का,
0: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, छोटा होगा शुरू, केले के झाड़ने के लिए भी
1: आएगी
0: डिग्री। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियाँ जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आगे में आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखें, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज़ तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो,

सामने उसकी सब जानना जरूरी है, जिससे थोड़ा जो बिजली आना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई? दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है? लक्षण देखें, लक्षण में भी

पेशेंट डायग्नोज करना पड़ेगा। पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्री लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो, हर ऑप्शन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्से

0: तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े मगर पेशेंट तो करा रहा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: यहाँ पर एक प्रश्न उभरता है, कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है और वो जब भी पूछते हैं थायराइड का प्रॉब्लम है, तो एक तो ये बात कि ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना ये क्यूरेबल है
0: क्योंकि

0: सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां उससे बचाव भी होता है। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट

0: स्कूल में। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसम नहीं है,
0: मौसम खाना खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए, मैं उठ

0: होती है।
1: ओहो
0: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, टीटी से भी असर करेगा।
1: ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पीना, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, जंक फूड वगैरह भी इसमें
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो।
1: जो ज्यादा इस्तेमाल होता है बिल्कुल सही है,
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड कम कर दीजिए
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
0: हाँ कम कर दीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा

0: फर्क, मतलब अपना स्वाद थोड़ा सा हटके देख लेना, वैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा छोड़ेगा। हाँ, हम जैसे बोलते कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि टीवी चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय

प्रोग्राम चलते चलते

0: जी, मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम ये अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की, ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है डॉक्टर जी, एक बहुत बड़ा सपोर्टर। और एक बार फिर विविध भारती को जय दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर लीला बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम से प्रस्तुत करता राम चरण मेरा। आज के सेहत का कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

0: बातों की रंगोली हंसी की झलक यादों की महक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जोड़ विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष अतिथि। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई
0: हो, के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धरती।

सुबह 7 बजे से विविध भारती पर।

ça m'intéresse autant, et puis la personne venait, puis

Thank you.

Então, o planeta está aqui, cada vez que

Like, what is the difference?

को मिलती है शिक्षा की रोशनी।

0: Tecnoco, digitalmente.
1: Oito bits, tudo que você vê, é tecnológico, já chegou.
0: Sem o nisso na dele boia da escuta para chefe de bits. Ah, e que vital, mas brilho, bem que já é. Alta bits, politécnico, alta bits, Institute of Management and Technology, bem que já é. Agora, full yacha, se vale me jane, se vale me jane, se vale me jane, se vale
1: जब हम लोग अलकबीर पॉलिटेक्निक को इस दिशा में ले गए अलकबीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाना चाहते थे किसी चीज़ को शुरू करना तो आसान होता है लेकिन उसे सस्टेन करने में ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं वी वर हैविंग डिप्लोमा कोर्सेज इन सिक्स डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वाइल वी आर वर्किंग टूवर्ड्स अलकबीर यूनिवर्सिटी वी विल बी स्टार्टिंग एडिशनल कोर्सेज तो उसमें आप देखते हैं दो साल पहले हमने बीसीए बीबीए के कोर्स को शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू अलाउ टू स्टार्ट दी

है जो कि रिक्रूटमेंट हो रही है वो कुछ कॉमन स्किल्स देखना चाहती है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहती है, कॉन्फिडेंट पर्सन देखना चाहती है, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट देखना चाहती है और स्पेशली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखना चाहती है। तो BBA कोर्स के द्वारा हम इन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करते हैं और जनरली बच्चे 3 साल के बाद आपको इम्प्रूव दिखाई देते हैं इन सारे स्किल्स में। बहुत सारी संभावनाएं हैं और बैचलर्स के बाद ये लोग एकदम इंडस्ट्री रेडी रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा।

0: क्षेत्र है। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ लगभग हर क्षेत्र तकनीक पर आधारित होता जा रहा है, इसलिए सीएससी केवल एक डिग्री नहीं है बल्कि भविष्य की अनेक संभावनाओं का द्वार खोल देता है। जैसे मैं बता सकती हूँ आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बढ़ता उपयोग आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की बढ़ती हुई मांग आप देख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल काफी अवसर है, और ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उद्योगों में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका भी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस की उपयोगिता फ्यूचर में भविष्य में बहुत रहेगी। हम केवल पारंपरिक कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं हैं बल्कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रदान करने का विशेष ध्यान देते हैं। इसके लिए आधुनिक लैब हैं, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण है, सेमिनार वर्कशॉप तकनीकी प्रतियोगिताएं तथा इंडस्ट्री इंडक्शन आयोजित किए जाते हैं हमारे संस्थान में।
1: यह तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की नई भाषा है।
0: सपनों को उड़ान सही प्रशिक्षण
1: कल कभी

सेंटर में जा रहे हैं उसका हमें पूरी जानकारी हो और उसमें उसकी हमें मदद हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो ई एस होते हैं उसमें हम इक्विपमेंट जो है ऑपरेटर जो है उनसे बच्चों को वेल वर्क कराएं, उनको अच्छे से समझाएं। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। तो इन सभी चीज़ें बहुत हमारे संस्थान में उपलब्ध है और हमारे संस्थान के जो विषय है उन विषयों में भी लैब जो है वो एकदम सम्मिलित किया गया है। आवश्यक रूप से बच्चों को लैब की करवाई जाती है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। संस्थान विद्यार्थियों को देखिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल यहाँ पर है और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ जो कंपनियाँ आती है हम उसको फीस देते हैं कि हमारे बच्चों में किस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू को सामना करने के लिए उसमें हिस्सा लेने के लिए आवश्यकताएं हैं। एक कोशिश और करते हैं कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने का। तो

0: है, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
1: मेरा नाम लक्ष्मी मार्डी है, मैं मुसाबनी की हूँ और मैं बैंक सिविल इंजीनियरिंग हूँ। मेरे भविष्य की योजना ये है कि मैं यहाँ से करने के बाद अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकूँ। युवाओं की आंखों में चमकते

मैं ये भी तो और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में

ما كان فيني عايز من

Yine dertli bir araştırma privatı

0: की सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें, जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31

0: खुशियों की रंगोली हंसी की खनक की यादों की महक बातों में भूलेगी अपनियता की रोली। दो जुड़े रेडियो भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे खुशियों के बीच जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साथ करेंगे

0: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: मन हुई। उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं
1: जी,
0: उन सबको मैं नमन करता हूँ और बड़ों को तो मैं पाउंडू करता हूँ और दूसरे जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार और बच्चों को इतने ही स्नेह।
1: तो आपने तो इतने वर्षों तक काम किया है, डिजिटल युग भी आ गया है और निजी एफएम चैनल्स भी आ गए हैं, आकाशवाणी अभी तक प्रासंगिक बना हुआ है मानते हैं आप?
0: हाँ,
1: तो प्रासंगिक रहेगा,
0: हमेशा हमेशा बना रहेगा। हमारे रिकॉर्ड सब करते हैं एक डिजिटल, वो हमेशा नहीं कहते थे आकाशवाणी कभी मरेगा नहीं बेटे, ये हमेशा जिंदा रहेगा। चाहे दूसरी चैनल हो चाहे नहीं हो, उसकी आकाशवाणी की प्रभुता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस अपने निष्ठा के साथ जुड़ों के साथ काम करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
1: जी,
0: उनका माँ मंत्र था और ये मंत्र मैंने घुर घुर के किया, कारण कि मेहनत करना मेरा काम था और मेहनत थी सब कुछ। मेहनत के कारण आज तक मैं यहाँ बॉम्बे जैसे छोटे से गाँव में रहता था,
1: मुझे
0: बिकारे जैसे स्टेशन में और शुरू से दोस्त भी छोटे था।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वहाँ से यहाँ तक आना और फिर बच्चों का पूरा ध्यान रखना और बच्चों को ध्यान के साथ उनको आगे भी बढ़ाना है। आज बच्चे विदेशों से चले गए हमारे तो चले गए, क्योंकि आकाशवाणी की बदौलत, आज इस आकाशवाणी की बदौलत हमारा परिवार आगे बढ़ा है। हमारा परिवार दिन दुनी रात चौबी इसी तरह से बढ़ता रहे और संस्था का आकाशवाणी की जो गरिमा है वो हमेशा बढ़ता रहे। इसलिए बढ़ता रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी
1: बिल्कुल। वो तो आपके कार्य बताते हैं कि आप किस हद तक आकाशवाणी से प्रेम करते हैं। आप जब आकाशवाणी की दुनिया में आए, इतने साल आपने काम किया है, कोई ऐसा लम्हा आपको याद है जब आपको

0: कच्चे मीठे फल बहुत याद है। जब मैं राजस्थान में था जोधपुर में मेरी पोस्टिंग थी तो जोधपुर में चौधरी भाई करके प्रोग्राम का मेरा डायरेक्टर था
1: जी।
0: तो चौधरी भाई के नाम से मेरे को आज से लोग पहचान लेते थे कि यार मेरे चार सौ को सुना भाई उनको तो कहाँ सुना भाई। अरे चौधरी भाई वो तो रेडियो में आते हैं भाई तुम चौधरी भाई कैसे हो गए तो वो तो नहीं हूँ नहीं हूँ भाई माफ करना मेरे ऐसा कैसे हम बात को कर लेते हैं तो जैसे देखो को करेक्टर जो हमारा है कितने समय सोच चुका है सही बात है और इसी करेक्टर के मार्फत मैं अपने बातों को उनके सामने रख देता था तो ये समस्या है इस समस्या का ऐसा समाधान होगा तो समस्याओं को अपन समाधान के रूप में लें न कि उनको समस्याओं को समस्याओं के रूप में लें।
1: मतलब जो आपका एक कैरेक्टर था चौधरी करके आपने इसके माध्यम से लोगों के सामने एक नई सकारात्मक बातें रखी
0: मैंने उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने कुछ तो ऐसे प्रोग्राम किए जो कम्पिटिटिव प्रोग्राम थे उसमें कुछ प्रश्न पूछ जाते थे तो सरकारी तंत्र से जुड़ा मैं और शिक्षा के पद से भी जुड़ा और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए मुझे वहाँ पर विशेष तौर से बीकानेर में तो मुझे ऐसे काम करने के कारण प्रशंसा पत्र भी दिया गया सम्मान भी मिला प्रशासन के द्वारा ऐसे सम्मान तो मैडम हम लोगों को सबको मिलते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे साथी लोग जो थे उस समय में इससे प्रति वगैरह है आप भी थे उस समय और लोग जो जुनून था आप लोगों में आप जो जुनून किए थे आप यहाँ पे आ गए

0: ऐसा काम करने लगा। हुजूर न होगा वो आगे बढ़ेगा मैडम, हुजूर नहीं होगा वो ही खड़ा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: इसलिए आदमी को आगे बढ़ना है। और हम लोग जो मौका मिला ना मैडम, उसकी सेवा करनी है, सेवा सेवा की भावना खत्म होनी चाहिए। और सेवा करने वाले आदमी आगे बढ़ सकता है।
1: अगर मैं एक बात कहूँ, मैंने क्योंकि आप जैसे अधिकारियों के साथ काम किया और बहुत ऐसे अधिकारी हमें भी मिले जो जुनून के जिससे काम करते थे, डांटते भी थे और बताते भी थे कि कार्यक्रमों को कैसे किया जाता है, और उससे बहुत कुछ सीखा, उनकी डांट से सबक सीखा कि किस तरह से कार्यक्रमों में गलती नहीं होनी चाहिए। सर आपसे इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली है और इस बातचीत के साथ साथ आपकी पसंद का गीत हम जानना चाहते हैं।
0: जया बद्री जी और शायद अमिताभ बच्चन जी दोनों फिल्मों के अंदर काम कर रहे थे।
1: मिली
0: मिली मिली हाँ कर रहे थे दोनों जी। और उसके अंदर जब कैंसर हो जाता है उनको जया बद्री से, और अंत के अंदर जो वो गाना एक आता है, मैंने कहा फूल

0: मुझे भी बहुत अच्छे उम्र को याद आती है स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज जी। वो अपने उनके जो प्रवचन होते थे बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, लाखों लोग आते थे, लाखों लोग। और मैडम आपके उनके आप खुशी होगी उस सब प्रयोगों में खुशी होगी इस बात की कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे किसी को भी। और इंटरव्यू में जिन्हें काम ये था कि सर वकील अपने नाम से सब लोग प्रबोधन में रहते हैं, आपको बड़ा था। तो मैंने कहा उनसे मिलन की जाते मैंने स्वामी जी हमारी एक चीज होती है आपके इसके बाद जो गीता की है और कर्मने वाली का उसको तो हम सभी जानते हैं लेटर वगैरह सब लोग मान लिए, परंतु इसके गुड़ अर्थ क्या हुआ कि गुड़ अर्थ जो आपने बताया आज लाखों लोगों के बीच में वो गुड़ अर्थ अगर किसी भंगू जो बहुत चल नहीं पा रहा है और जो यहाँ आपको बनाव तक नहीं आ पा रहा है तो वो घर से सुने तो क्या हर्ज आपको जानना पड़े कोई नुकसान नहीं है तुम्हें नहीं ले जाए रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं और पहले सबसे पहले रिकॉर्डिंग मेरी शुरू
1: की।
0: आप बिहार के अंदर उदय राम सर गोरे की बात बताओ और उस समय अपना सीनियर राम सर उदय प्रमोद शर्मा
1: जी
0: साथ में थे। आज भी देखते कि मैंने आपको इंटरव्यू लेते सुना है और आपकी बात तो बड़ी प्रभू ऐसा कहते हैं मैंने यानी मेरी कुछ नहीं है मैंने सीखा है आप लोगों से और मैं हमेशा मैडम हरे से सीखता हूँ जैसे कि जो गार्ड होता है जो अपना जो गेट पे रहते थे ना उनसे भी बातचीत करके सीख कर लूँ और सीखने में क्या है
1: ये आपका बड़प्पन रहा इतनी सरल हृदय जो इंसान है वो कभी अपने पद को नहीं लेकर रहता सभी की इज्जत करने के साथ ही वो आगे बढ़ता है और इसी तरह से उसको सफलता भी मिलती है। तो परमा साहब हम अब चलते चलाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं।

0: अपनी सेवाओं के बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हमें देखे हैं आकाशवाणी की दुनिया में, जैसे कि डिजिटल रेडियो आ गया है, न्यूज ऑन ए आई आर एप आ गया है जहाँ से पूरे विदेशों में गाँवों में हम रेडियो को सुन सकते हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब की उपस्थिति हो गई है, एफएम के साथ साथ पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई है। ये जो इतने सारे बदलाव अब रेडियो के साथ साथ हम देख रहे हैं, उनके साथ में परिवर्तन, आप इसको कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जब मैं एक बार टाटा हॉस्पिटल गया तो टाटा हॉस्पिटल में गुप्ता साहब को उनसे मिलने के लिए गया, तो उनके सुनों के पास बैठा, तो वीडियो कौन सुन लोगा वहाँ से आवाज कर, अच्छा एक बात सुनो, आपको रेडियो की ऐप मालूम है कुछ? अरे आप न्यूज कब को सुन सकते मालूम है आपको? नहीं, अधिकार बच्चों से होता है कैसे मालूम है कि अगर आप जरा सा भी न्यूज एक सुन लें बराबर ध्यान से, तो मेरे जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को तुम पास कर सकते हो भाई, क्योंकि जीके की जो बातें हैं, जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, वो पूरी पूरी समाचारों में आती है। और हमारा समाचार जगत का मैंने एक उसको ऐप दिया और उसके ऐप उसे डाउनलोड किया और मैंने रेडियो सुन लिया, आपको सुना उसको मैंने, अरे मेरे को तो मालूम नहीं था, आप बुरे इसलिए तो करते हैं हमारे लोगों की, मुझे मालूम नहीं था, उस ऐप के अंदर कोई भी न्यूज़ को कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी न्यूज़ क्या सुन सकते हैं, मुख्य समाचार को आप दोबारा सुनना चाहते हैं वो आप नहीं सुन सकते, हमारे यहाँ पे वो दोबारा सुन सकते हैं आप, वो उस ऐप के अंदर पूरी चीजें की बातें हैं, डिजिटल की बातें हैं, तो ये सब बात तभी संभव होगी जबकि हम लोग उसमें इंटरेस्ट लें। और आप लोग जो भी आज काम कर रहे हैं डिजिटल सेवा के, तो लोगों को बताएं, भरपूर बताएं, तो देखिए ऐसे ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं, इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे ऐप्स हैं और इस ऐप्स को हम इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं और आप इन चीज़ों को सुनें और बड़े बड़े अधिकारी बने और बड़े बड़े अधिकारी बन के देश की सेवा करेगा। मेरा एक ही एक बच्चा हमारे फैमिली का, जैसे एक हमारे सौरभ जी जो बीकानेर का ना, उनका बच्चे जो आयुष मना ना, इतनी खुशी हुई उनसे क्योंकि शायद हमारे एक डिप्टी ऑफिसर थे और बाद में अधिकारी भी होंगे, है ना, हाँ तो अधिकारी होंगे, तो अधिकारी बनने के बाद में वो चीज़ें मालूम पड़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे परिवार के जो बच्चे आगे बढ़े आगे गए तो वो किस काम करे, कोई आकाशवाणी की बदौलत गए, मैं आपसे सही कहता हूँ, आकाशवाणी के माध्यम से जो चीज़ें हम लोगों ने की थी वो हमारे जानते थे कि इनके पापा को जो जुनून है ना, पापा को जो बड़ा जुनून है।
0: जी बिल्कुल, और वही जुनून आज आपको हमारे सामने ले आया, आज विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, आपने अपनी अनमोल बातें हमारे साथ साझा की और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं परमात्मा।
1: मैं आपका और सुनने वाले सभी साथियों का बहुत हृदय से नमन करता हूँ उन सबको और अभिनंदन करता हूँ, और ये हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए हमसे, आपको नई बातें आपको मिलेगी, क्या खेती में, क्या आप समाचारों में, अच्छा आपने जीवन में उन बातों को उतार लीजिए, आपका जीवन ऐसा निर्मल बन जाएगा, घमंड आपका स्वास्थ्य में नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ, अभी घमंड का आदमी कितना बड़ा होता है आपको मालूम
0: है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में थे सेवा निवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय रवि शर्मा साहब।

0: क्यों
1: भैया? कमला के यहाँ।
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इन्विटेशन आया नहीं। व्हाट द ओकेजन?
1: भाई इंग्लैंड से मेल ब्याह करना है, तुम्हें नहीं मालूम?
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा है। 5 बजे के बाद किसी वक्त?
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इन्विटेशन की तरह जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसे?
1: मुझे यकीन है उसे तुम्हें इन्विटेशन कार्ड जरूर दिया हो। हो सकता है डाकू कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं, इन्विटेशन की ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कमला से मुझे कितनी देर हो गई है, मुझे कम से कम 6 महीने हो गए होंगे। हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊँ, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना, ये बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस नहीं बैठा हूँ।
1: वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है, वहाँ भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे, हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है। फिर जाने उनके साथ कितनी देर लगता है? आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो वक्त मेरे को आता
0: है, मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगा। मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहें। थैंक्स फॉर कॉलिंग,
1: बाय बाय
0: बाय बाय। क्या लिखा
2: था? कॉपी ऑफ दिस
0: लीव इंक्लूड्स योर वर्क फॉर योर रेजिग्नेशन, कंटिन्यू योर सक्सेसफुली एक्सेप्टेड ऑफर। नहीं बस बाकी ये सब कल सुबह आकर करेंगे। थैंक यू, बस जाते हैं, जल्दी टाइप करना और मुझे जाना है।
2: यस सर।
0: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पटल सब तो नहीं आया?
2: नो सर, डाक से मैंने सब आपको दे दी थी। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ शायद।
0: नहीं नहीं नहीं होगा, मैं तो खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो देख लो शाम की डाक में शायद।
2: यस सर।
0: विक्रम?
3: यस सर।
0: जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊँगा। जी हाँ जी हाँ, आई कैन एक्सप्लेन टू हिम सर। यस सर, वेरी वेल सर। कागज और बैग मेरी गाड़ी में रखिए।
2: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है।
0: ओह इट्स ऑल राइट, खत टाइप होगा?
2: यस सर।
0: ये लो, बाकी ये खत ऐसे ही यहीं छोड़ते हैं और सुबह भी चेक करवा दें।
2: सर, आप अपना पेन भूल गए थे।
0: थैंक यू, मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
2: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है।
0: अच्छी बात है,
2: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।
1: आज कमला का रिसेप्शन है भाई।
0: अरे
1: उसका भाई इंग्लैंड से मेल ब्याह कर रहा है।

0: मेरा आत्मा आने का बिल्कुल इरादा नहीं।
1: तो फिर तुम यहाँ कैसे हैं?
0: कॉलेज के घर पर थे, सोचा उनका रेस्टे तैयार कर लूँ, कॉफी निकाल कर बैठे तो अचानक याद आया कल जिंदा का बर्थडे है। तुम जानो ये मॉडर्न लड़कियाँ बर्थडे पर प्रेजेंट में भेजे तो अंकल जैसे डिग्री दे जाए।
1: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
0: जून में निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब नहीं गए तो कॉफी के लिए तो पूछते
1: हैं। हाँ हाँ चलो, कहाँ चले?
0: सुना है ग्रीन लाइट की कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुक्त मिलता है।
1: जी म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेती
0: बचपन जी से तो जा रहे। हाँ भाई मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना, अच्छा चलो कॉफी के पैसे अपने।
1: तुम्हें डायलॉग सुनने का बहुत शौक है क्या? तुम चाहती हो मैं रोज रोज तुमसे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
0: तारीफ तो तुम क्या करोगी, बस कर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। चलो भैया
1: चलो ना, लेकिन पहले ऐसा प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी।
0: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने तो भाई ड्रॉप कर दिया।
1: पैसे कम पड़ गए होंगे।
0: पैसे कम पड़ गए होंगे, आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है।
1: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा दिन तुम्हें ही देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम तो बना मुझे क्या शर्म आई?
0: मुझसे नहीं वो पैसे तो आई थी।
1: वहाँ तो फिर मैं ही पे करूँगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा। देख लो तुम कॉलेज से सीधे घर के लिए, ये भी मैं सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा करूँगा, तुम फिर भी तुम्हें ढो लेंगे।
0: पूरे 10 मिनट देख कर इंतजार किया था जाने के पहले।
1: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
0: कभी कभी ऐसा लगता है तो तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुँच कर मैसे मैसी ले जाना था? इतनी सारी बातें अगर तुम समझ सकते हो तो अपना बेड़ा नहीं काम होता। चलो हमारी
1: सोचा आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था, लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल कर आ गया।
0: ना ना ना ना,
1: मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी, बल्कि जरूर सिनेमा स्पेस में शॉपिंग करती हो।
0: दिल ना हो जाहिर हो गया।
1: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है। देख लो तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ। तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कब्जों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं।
0: आजकल के मॉडर्न टाइप के कोई नई तरह के डायलॉग नहीं होता।
1: खुद ही सुनते हैं।
0: सुबह की बात अच्छा होता। अब चल कर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है। मैंने कहा था अंधेरा होने से पहले चल लो।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन अम्माओं को अपनी बेटियों की चीज़ें तो क्यों खाए रहती है। अगर बाहर से लौटे लौटे अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
0: तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा रहता है ना, न मिले तो सुना सुना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार खुल जाता है। फिर माँ भी कह रही जाता है बेटी को जाना उनके लिए फराज है ना, जिसे उसके मालिक के हवाले किए बिना

0: तुम तो भी क्या करना
1: चाहते। छोड़ गई मैं बात।
0: क्या मुझसे
1: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई? गुड इवनिंग विक्रम। हेलो आंटी।
0: अच्छे हो बेटे।
1: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी। अरे भाई ये बधाई बधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
0: बहुत नाराज हो तुमसे, सब लोग तो कभी से आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
1: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ।
0: डाइनिंग रूम में शुरू करने का जब मैं
1: चलिए आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
0: बहुत देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। टीवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
1: अरे भाई मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
0: हूँ। अच्छा है अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
1: मैंने
0: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है। हर चीज

की इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनेगा कल इसी समय हवा महल।

0: सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: तो सुना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के

जो गाँव का हर देश स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्टीव जॉब्स और एलजीसी की आवाज में 199 फिल्म के गाने से। यह है फिल्म का नाम 199। संगीत राज्य में स्टीव जॉब्स ने बोले कि हम

दौर की आवाजें दिलों की अनूठी दरबार सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिस्तरी भी हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

की रंगोली हंसी की झलक यादों की महक बातों में भुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: से पूरी नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सती सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: हमारी विशेष सखी 2 जून सती सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे सखियों के बीच
2: बधाई हो
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगे अपने दिल की बात। जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। समय आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धरती कार्यक्रम चल रहा है चित्र

के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पुष्पधनी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज सूरज पांडे को मरणोपरांत

0: पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शुभम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: संघर्ष के सबसे ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: उपहार की उपलब्ध

मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने

天上。

challenger avanti.

उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गोलीबंद में केवल प्रणाली में तकनीकी हराने के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए सैन्य अभियान जारी। सेना और SARF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान वीके और अक्षय धीरे ने पुरुष 20 वर्ग में स्वर्ण पदक

0: बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुना न भूले। कार्यक्रम उजाले

0: राउंड हम चलाएंगे खुशियों के बीच।
1: बधाई हो
0: जिसमें के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बात। जरूर सुनिएगा जो हुआ।

0: Cristo, un sitio di base.
1: Ma lui si guarisce una persona.
0: O dice, gatta, mi chiede io a che arrivi a Gini, che da manna e manna e carriera, da è. Tu a fuggi, e dici che ne che amma, già, insomma, già, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, भाग रहे हो और जब भी कर लो भाग ही रहे हो मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है ये कैसे हो सकता है जैसे बड़े टेंशन में वो शॉर्ट या

हैं। संगीत का लक्ष्मीकांत पर लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में

बच्चा देश को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 वर्ष तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर

राम के साजिशों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मैंडोलिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए

का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसी वर्मन की रामचरित मदन मोहन शंकर जी जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश की। लिहाजा उनके वादक के रूप में छुटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस रोज ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई लेकिन वहाँ राज नहीं आया। फिर दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वीना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो

शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले

के लिए जोर मारा और लक्ष्मीकांत स्टेज पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त चिकित्सक से लेकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का काजी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के पर

उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हल्का हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हुआ।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटी बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म

सबसे सबसे सफल जोड़ियों में से एक बादशाह की है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 फर्स्ट।

से बढ़ के इस गाने की फिल्म संगीत में और इसी भी आप रेडियो पर सुनते हैं लक्ष्मीकांत कैरेला। लक्ष्मीकांत कैरेला ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए जिससे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना

बच्चा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर पीते थे। इनकी पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना

पहले आपको बता दें, शोध आलेख और पर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति के सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

happening, what could happen,